एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।

0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
1: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवां स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कॉन्टैक्ट करो। स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ
3: .com। पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
3: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो। स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465 4924।

0: हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक नंबर टू, हेलो
1: Yep, all good.
0: हेलो माइक नंबर टू,
1: Yes, all good.
0: हेलो।

इंश्योरेंस ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्त लागू।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
3: सूरज देवता
2: की मतलब?
3: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
2: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाउणा है हुणे।
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-06-4994 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट।

0: के अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस फ्लीट लाई गल करो, व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।

0: ओह मारे गए, दोबारा देर हो गई। गड्डी चलाउन विच्चों तनाव नूं बाहर कड्डो अते करो पहला ही तुर पाओ। जे तुसी गति सीमा तो तेज गड्डी चलाउंदे हो तां तुसी कानून नूं तोड़ रहे हो अते तुहानूं महंगा जुर्माना हो सकता है जां अपना लाइसेंस गुआ सकते हो। TSC वल्लों सुनेहा, हर किसी वास्ते सुरक्षित तरीके नाल गड्डी चलाओ।
1: जे तुसी बीमार हो तां AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपने दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इनफो कॉल 0 499-2535-45।

हमारे समाज में टीचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे कई लोगों को प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं और उनके जीवन में वास्तविक प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ विक्टोरिया में विभिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित टीचरों का होना महत्वपूर्ण है और इससे विद्यार्थियों की शिक्षा में लाभ मिल सकता है। यदि आप या आपका कोई जानकार यहाँ विक्टोरिया में टीचर बनना चाहता है तो कई प्रकार के टीचिंग कोर्स उपलब्ध हैं। आप स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र हो सकते हैं ताकि आपको हाई स्कूल टीचर बनने में सहायता मिल सके। टीचिंग में करियर बनाए इससे जुड़ी और अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए टीच द फ्यूचर सर्च करें। विक्टोरिया सरकार, मेलबर्न द्वारा प्राधिकरण।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आड़े नाल
2: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने
3: सूरज देवता
2: की मतलब
3: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई
2: मैनू नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल कॉल सन करंट 0448-066-494 ते साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी
4: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानू उडीक रहा है फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो बिजनेस फ्लीट लई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड
5: सोना चाहिदा
6: भरोसा चाहिदा
5: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई। लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
3: फ्रॉम द मेकर्स ऑफ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स चांद मेरा दिल। वॉच अनन्या पांडे एंड लक्ष्य इन चांद मेरा दिल, कमिंग टू सिनेमाज ऑन May 22nd।
4: बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: किथे वज गई तेरी गड्डी?
1: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
5: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है।
6: सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
7: Love it.

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडीनोंग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना जूलर स्टोर खुल गया। ओ ही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना जूलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499 2535 45।

0: अजित सिंह में NGIC उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
1: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दे फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
2: 04-23-280-252 साल तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
0: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet ले गल करो, vehicle experts Tim Forbes या Corey नाल, Radio हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford।
4: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
5: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
6: फ्रॉम द मेकर्स ऑफ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स चांद मेरा दिल। वॉच अनन्या पांडे एंड लक्ष्य इन चांद मेरा दिल, कमिंग टू सिनेमाज ऑन May 22nd।
7: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
8: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
7: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
9: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
10: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
9: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
11: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੈਡੀ ਸੈੱਟ ਗੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਟਸਟਨ ਫੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੀਲ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੀਲਸ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੀਲਸ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਤੂਰ।
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਾ ਵੀ।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुक दे नी
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: की होया इनी टेंशन क्यों लेती होई है
3: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया
2: आज सिमी भैन जी आए सी उन्हां ने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ
3: ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ
2: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲੋਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਯੂਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਟ 0430-8330-1111 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ uvfinancial.com.au

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू
1: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: जदों घरेलू बिजली दे काम दी गल आउंदी है ता इसनू खुद ना करो। DIY, डोंट डू इट योरसेल्फ। पावे तुसी इसनू सिखण लई YouTube ही क्यों ना देखी होवे, पावे तुसी एह काम कई वार हुंदिया देखिया होवे, पावे तुहाडे इलेक्ट्रिशियन दोस्त ने तुहानू हिदायतां ही क्यों ना दित्तियां होण, पावे तुसी किन्ने भी हुनरमंद, चलाक जां आत्मविश्वासी क्यों ना होवो, एह खतरनाक है अते गैर कानूनी भी। इथे कोई गुंजाइश नहीं है। बिजली दा काम DIY, डोंट डू इट योरसेल्फ। हमेशा किसे लाइसेंस शुदा इलेक्ट्रिशियन नु फोन करो। energysafe.wic.gov.au ते जाओ। विक्टोरिया सरकार, मेलबर्न द्वारा जारी।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
4: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
5: हां जी रेडियो।

Kom maar, waag Fakira, waag me Fakira, waag me Fakira. Sorry for my poor voice, but say thank you to me for my amazing, impeccable song choice. क्या बात है, काश कोई इन्हें रिकॉर्ड कर, अच्छा रिकॉर्ड तो हो रहा है, मेरा भी कोई हाल नहीं. खैर, वेलकम बैक, दिस इज कृष्णा एंड यू आर लिसनिंग टू क्या बात है. आज मैं क्या बात है, वैसे मैं आज क्या बात है बोलना ही भूल गया शो द स्टार्टिंग. सो भाई हाँ जी, असी क्या बात है दे नाल जुड़ चुके हैं. आप पहले सैगमेंट के अंदर गलबात की संक कॉस्ट फैलेसी बारे, जिहदा मतलब हुंदा कि आपां किसी रिलेशनशिप, जगह, लोक, ऑर्गेनाइजेशन, पैसा, इन्वेस्टमेंट, फलाना टमीका एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इन्हां सारियां चीज़ों उपर इन्वेस्ट करते रहने हैं क्योंकि असी पहले इन्वेस्ट करते आ रहे सीगे. सानू पता हुंदा कि इस चीज़ दे अंदर सिर्फ फेलियर है कि जे असी इज्जत चाहते हो सामने हो तो इज्जत नहीं मिलनी, जे असी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते अपने पैसे की तो वह नहीं मिलनी, तो जे आप प्यार शायद भालते पे हैं सामने कि जिस तरह का असी दे रहे हो उस तरह का वो भी नहीं मिलना, कि सानू पता वापसी कोई नहीं, फिर भी असी खर्चा करते रहने. क्यों? क्योंकि साडे माइंड ने सानू ट्रेन किया कि जे आप एक बारी एक चीज़ करती है नजिठ ली है वो दोबारा दोबारा करते रहना है ना. तो जी हुण आपां अगे इस सिलसिले नू वधावांगे, तो आपां हुण अगे गलबात ये करांगे कि भाई यह जिहड़ी कंसैप्ट है, जिहड़ा भी कंसैप्ट लिआंदा सीगा साडे आहा ओहायो च रहण वाले अपना बंदियां ने आर्क्स एंड ब्लूमर ने, उन्होंने किस तरह की केस स्टडी की जिस तो उन्होंने पता लगा है ना. सो मैं थोड़े ना रियल लाइफ केस स्टडीज़ भी दस दिना जिद तो जिस तरह उन्होंने रिसर्च की. पहले का नाम उन्होंने रखिया जी द थिएटर टिकट एक्सपेरीमेंट. जी वो अंदर उन्होंने की किया, उन्होंने सेम नंबर ऑफ पीपल लैके तीन वक्रो वक्रे ग्रुप बनाए. पहले ग्रुप नूं कहा जी कि यह ना अज इस सीज़न दे टिकट हैगियां $15 दियां मूवी थिएटर दे, ते इहदे अंदर कह लो तुसीं 5 शो वेख सकते हो $15 च, ठीक है. दूसरे नूं $13 दी दित्ती हो टिकट, दस्या कि भाई आ जिहड़ी $13 वाली टिकट है ना तेरी आह वाली, इहदे अंदर तू सेम उन्ने शो देख सकदा जिन्ना $15 वाले ने कीते, तू खर्च पैसे पर तू सारे वेखने आ. उह कहिंदे ठीक है भाई. फिर बाद जो तीसरे की गल हुई तो फिर तीसरा सीगा जी कि ग्रुप सी, ग्रुप सी नूं उन्होंने दिता $8, ठीक है. सो पहले नूं दिता 15, दूसरे नूं 13, तीसरे नूं 8, इन्हां नूं इन्ने इन्ने दियां टिकटां वेचियां सेम नंबर ऑफ शोज़ इको थिएटर दे अंदर देखने लिए वक्खो वक्खरी फिल्मां दे. जवाब की आया जी, जवाब यह आया कि जिहड़ा ग्रुप ए सी जिन्हें सब तो ज़्यादा महंगी टिकटां खरीदियां उन्होंने ही सब तो ज़्यादा वो शो वेखे, क्योंकि देवर लाए कि असी बहुत पैसा खर्चिया है ना. तो जिहड़ा ग्रुप सी सी उन्होंने उस टाइम उठना सही मनिया जदों उन्होंने दसिया कि हुण ये सारी बोरिंग फिल्मां ने, ये फॉरन लैंग्वेज दियां फिल्मां, असी तां इंग्लिश बोलना जानते हैं, असी नहीं सब टाइटल पढ़ के भाई इटालियन फिल्म वेखनी है ना. तो वह लोग कहिंदे कि बाय बाय टाटा टेक केयर. इस तो यह साबित हुंदा कि क्योंकि मेरे पैसे वध लगे मैं शायद अपने लाइफ दे कीमती घंटे कीमती वक्त बर्बाद कर देवा, तो वो सिर्फ इस कारण क्योंकि पैसे वध लगे है. जे उस ही चीज़ में पैसे घट दिते होंगे है ना, तो शायद मैं इन्नी ज़्यादा उस चीज़ को तवज्जो या इज्जत ना देवा. एदर एक होर कंसैप्ट आता ओपरचुनिटी कॉस्ट कहते हैं. जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हुए, जो लोग आई एम प्रीटी मच श्योर इफ दे आर वर्किंग इन रियल एस्टेट और मॉर्गेज ब्रोकर ने या फिर इन इंश्योरेंस दे, दे वुड बी यूजिंग दैट टर्म अलॉट, क्योंकि वह पॉइंट ही यह होंगे कि किसी चीज़ को छड्डन की कॉस्ट कई बार बैटर होंगी है नुकसान नालों. कि मैं पता कि मैं ये करता रहांगा तो 10 रुपए का नुकसान है, पर जे मैं नहीं करांगा तो शायद नुकसान जड़ा वो घट है, तो बैटर यह है कि मैं घट नुकसान चक लवा. नुकसान तो होना ही है दोनों केसिस. सो ये चीज़ा माइंड च रखनिया चाहिए, सही कि नहीं. अच्छा फिर दूसरे पास जो तुम देख लो, उन्होंने एक होर कढ़िया एक्सपेरीमेंट, यह है जी स्टडी 2. यदा नाम यह है जी द हाफ ईटन मील स्टडी, ठीक है. रेस्टोरेंट के अंदर गए, रेस्टोरेंट के अंदर लोगों ने एक्सपेंसिव खाना दिता, ठीक है. तो एक नू कहता जी खाना 2000 का, एक नू कहता जी खाना 200 का, ठीक है. सेम फूड एंड इट वॉज़ नॉट एट ऑल अ गुड फूड, पुअर टेस्टिंग फूड सिगा,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲੰਘਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਰੋਏ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ $2000 ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਫੂਡ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਊਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ 200 ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਭਰਾ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲੋਸ ਐਵਰਜਨ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੂਡ ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਮੂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਰਜਨ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਜਨ ਦੀ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 13 ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਂਝਾ ਸੁਣੋ।

हाँ जी, मैं कृष्णा भारद्वाज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। कैसे हैं आप? लगता है आप काफ़ी समय से मुझे मिस कर रहे होंगे। दैट वाज अ वेरी पुअर जोक गाइस, इट्स ऑन मी, मेरी गलती। तो असी आ गए जी वापस, फाइनल फाइनल फाइनल राउंड हूँ अपनी गलबात दा एंड होन लगा, गलबात खत्म होने लगी है। थोड़े तो मेरे बिच छोटे दे बिच थोड़ा जहा समा रह गया, तो आप हुण इहनूं गल नूं अगे वधांदे होए खत्म करिए। इसनूं इसदी डेस्टिनी तक, सॉरी डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनी भी वैसे सही वर्ड सी पर चलो जो है सो है, डेस्टिनेशन तक लैके चलिए। तो जी हुण इह है कि हाउ टू को ओवरकम दिस। इहदे अंदर भी जी वो प्रधान होरी दस के गए ने, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल। एंड अगेन जो तुसीं हजे तक मेरे नाल बने पए हो तुहानूं पता है की करना, बट स्टिल मैं दस के जाऊँगा। सो अपने कॉपी पेन फिर तो तैयार रखो क्योंकि हुणे ही थोड़े कोल इदा दे जवाब आन लगे हैं। ठीक है जी। सो टू ओवरकम ए वाली फीलिंग, ए टेंडेंसी हटाने लिए थोनों एक डिसरप्शन लगानी पैनी है अपने अंदर, है ना। एक डिसरप्टर होना चाहिए जिस करके तुसी ये काम करना हट जाओ, तुसी बार बार नुकसान वालू खुद जाना रोक लो खुद नू, है ना। सो चार एक्सरसाइजेज दसियां जी उन्होंने, ठीक है जी। पहली एक्सरसाइज है जी फ्यूचर फोकस्ड थिंकिंग। सिंपल है, उहदे अंदर इह जी कि समझो तुसी जो भी कर रहे हो, भावें अगेन ओ वाला पैसा इनवैसट, ओ वाले रिलेशनशिप च इनवैसट, या फिर ओ वाले चार दोस्तों च इनवैसट, जो भी इनवैसट कर रहे हो अपना मन अपना धन जो भी, तुसी ए सोचना आराम नाल शांत दिमाग नाल कि जे यह चीज़ अज तो मैं शुरू करन लगा हुंदा, जे मैं हुण तक कदी कीती ही ना हुंदी ते की मैं करदा। Ask yourself because you need to be in the present, right? So एक तो ये हो गया। फिर दूसरा जी कि बशीर बद्र साहब ने क्या है कि जो गुजर गई सो बात गई, ए सेकेंड भी उन्होंने यही कहा, पर इन्होंने बेसिकली यही समझाया कि जो चला गया चला गया, जो भी इन्वेस्ट कर चुके हो वह जा चुका। नो बडी ओ यू, जे तुसी किसी नाल चंगे हो, जे तुसी किसी का कुछ किया तो यह थानू लगता मोरली कि थानू वह चीज़ वापस आनी चाहिए है, पर कोई भी इस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं चकता। कोई भी कितने भी रिटन टैक्सट नहीं है कि कोई थोड़े नाल उदा ही व्यवहार करे जिदा तुसी उन्हां नाल करते हो। तो सेम गोज़ विद मनी, जे थानू लगता कि अज वह चीज़ इन्वेस्टमेंट मैं जो करता पाया मैं कदी ना कदी पैसा वापस मुड़ के आऊगा, तो इदा नहीं हुंदा। तुसी जिन्ने मर्जी पैसे अपने सुटने सुट लो, खराब करने कर लो, पर इदा कदी चीज़ा ठीक नहीं हुंदियां। फिर है जी ओपरचुनिटी कॉस्ट, जिदी मैं गल पहले भी की थी थोड़े ना, है ना, कि जे मैं यही पैसा या यही एनर्जी इत्थे लाने नालों कितने होर लगावा, इत्थे लगाने नालों कितने होर लगावा, शायद की पता बैटर आ जाए रिजल्ट, हो सकता कि बैटर थिंग्स हैपन टू मी, हो सकता कि मैनु ज़्यादा बेहतर लोग मिलन। हाँ, पहले पहले हर चीज़ थोड़ी औखी लगती है, पहले पहले नवे लोगों से दोबारा उठना बैठना विचरना औखा लगता है, पहले पहले दोबारा नवी इन्वेस्टमेंट करनी औखी लगती है, नवा रिश्ता बनाना औखा लगता है ना, पर ओहो समा एक नवी चीज़ नू देना शायद जेड़ा थोड़े लिए बेहतरी कर सके, रादर दैन उस चीज़ से वह समा तो पैसा लगाना जेड़ा थानू पता है कि वह थानू सिर्फ नुकसान ही करेगा, इज़ मच बैटर। एंड जी लास्ट वाला जी अगेन फ्यूचर फोकस्ड थिंकिंग जी सी ना, वो ही नैक्सट एक्सरसाइज है। एंड यह मैंने सब तो वधिया लगी है, इसलिए मैं इन्हें लास्ट से रखा सगा। यह है कि जो भी इदा का दोबारा डिसीजन लैन लगो ना, तो अज की तरीक देख लैना, जो भी तरीक होएगी उस दिन की, उसनू सीधे दे सीधे 5 साल अगे लै जाना, तो कहना 5 साल बाद वाला मैं ये चीज़ नू किद्दा वेखांगा, एंड 5 साल बाद वाला मैं कि यह चीज़ करांगा, एंड कि 5 साल बाद वाले मैं नू ए चीज़ दा कोई फर्क पेगा। आई एम प्रिटी मच श्योर वी ऑल नो वट द आंसर विल बी, एंड उस आंसर दे उपर एक्सरसाइज करना। एंड इस तरीके नाल इस कंसैप्ट नू जे आपां समझे हाँ, तो जे इस कंसैप्ट नाल थोड़ा जा थानू ये लगा कि हाँ यार ये तो मेरी हल्की जी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मन मिलया, तो फीडबैक भी जरूर देना यार, है ना, कि वधिया लगा कि नहीं लगा, नहीं तो किसी और चीज़ की तैयारी कर लेंगे। बट आई बिलीव कि दिस शुड हेल्प एवरीवन। सो दिस वाज संक कॉस्ट फैलेसी। तालियां।
ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਬਦਲੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਰਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, 1960s ਦੀ ਜਾਂ 50s ਦੀ। ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਦ ਨਾ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰਬਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਗਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਬਗਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ। ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਮ ਵਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਪੈਸੋ ਕੀ ਕੁਛ ਤੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਮੁਝੇ ਕਹੀਂ ਪਰ ਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਦਿਲਵਾ ਦੇ, ਕਹੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਲਵਾ ਦੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਹੂੰ। ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮ ਵਾਮ ਕਾ ਤੋ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬ ਹੈ ਕਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਦੇਖਤਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਤੁਮੇ ਕਾਮ ਵਾਮ ਦਿਲਵਾਨੇ ਕਾ, ਪਰ ਨਾ ਮੈਨੇ ਮੇਜ਼ ਪਰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਤੁਮ ਐਸਾ ਕਰੋ ਯੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਅਭੀ ਕੇ ਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਬ ਤੁਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਤਬ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 200 ਰੁਪਏ। 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਦੇ।

0: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
1: 0433-280-252।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो, विजिट goldleafdairy.com।
3: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
4: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
5: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil coming to cinemas on May 22nd.

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्त लागू। हाँ जी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुक दे नी
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: हां जी हां जी ओए हां जी
3: हां जी रेडियो

0: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 04332802522 ते।
1: हां जी हां।

0: Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
2: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है
1: ओ हुन टेंशन नहीं हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग फॉर मोर इन्फो कॉल 0499 2535 45 45

गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हासो कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हों जाना आखा नाई, कहना कथन न जाई। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जित सपावा, बिन पाने के नाय करी। जेती सृष्ट उफाई वेखा, बिन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवाख नाम विच जानिए, नाल चले सब कोए। चंगा नाव रहाए कै, जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवे, ता वात न पुछे के। कीटा अंदर कीट कर, दोसी दोस तरै। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। ते हा कोई न सुजे, जे तिस गुण कोई करे। सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनै तर तवल आकाश। सुनै दीप लोप पाताल, सुनै पो न सके काल। नानक

सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावे राह, सुनै हाथ होए असगा, नानक भगतां सदा विगा, सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कई न जाए, जे को कह पिछे पछताए, कागद कलम

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाक सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंग

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार। ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए। ओ जाने

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एक कावार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सत्य की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंग दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोय, राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था प्रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव, केते नानक अंतनांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद बनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप, कांकिया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महामल सूर, तिन मैं राम रिया प्रपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, कांके रूप न कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कह राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

कालांकान अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्री तरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभ जमेश के आगा जिकर्म के आभा

तंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है कि आप अभेव है कि चक्रंग बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैब गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के अकाल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम है सलीख मुदाम है गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते बुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज़ुल तमाम है रजूअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाय यकीन है अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज़ुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे शुभंग स्वरूपागे सुसर्वन रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छ जय छूत है कि नरकम प्रनाश है पृथ्वी प्रवास है निरकत प्रवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपण चंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तौ प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तौ प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सकन है हिरासल फकन है कलंकं प्रनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकं प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वल गवन है के हमेशल रवन है तमाम तमीज है समस्त अदीस है परंग परंग ईस है समस्त अदीस है अदेसल अलेख है अभेसल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है के जुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुभाष है के अजब स्वरूप है।

गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछ जुगात अज जनवाद अनछन जुगात अनरंजवाद अनटुन पंडार अनठंड अपार आडीठ धर्म अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मन शांतो प्रसाद करना ले अर काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंग पार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अकृताकृता है तरनी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सरूपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे पुयांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए सराव समूह सिदान के देख फिरियो करजोग जति के सूर सुरार दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिगति के सारी देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पुजान कपूर बली बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपत अंधकुना के पाएं बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारे ऊत पवेख पवान के पुपत कौन गने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत हार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जा।

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बिछैया। तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सु एक दवैया। दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बार जय तुन पापन के बोपुंज खपेंगे। सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबै अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे। ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत

0: लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबै तुम कावो आप हाथ दै मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया स्तुजो करियो रच्छा।

दसकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरत निरालम जानत भेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकीनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी। कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा।

है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

अकथ की करो कहानी, करा कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईऐ, तान मान तान सब सौंप गुर को, हुकुम मनिया पाईऐ, हुकुम मनो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी, कह नानक सुनो।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

ही गुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शत्र तख्त दे मालिक गुरता गद्दी ते सुभाए मान समुची मानुखता नु सांझा ते सुखैन उपदेश बख्शिश करन वाले दीन दयाल भगत वशल करुणा में सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र खजूरी विच महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा दीवान खाल मंजी साहिब विखे बड़े अदब सहित पातशाह जी दी खजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों आप जी समूह संगतां वडभागे हो जिन्हां नूं महान पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे सतगुरु पातशाह जी दे चरणां अंदर जुड़ के पावन अमृत सरोवर च इशनान करन दा ते धन गुरु रामदास साहिब पातशाह सोढ़ी सुल्तान पातशाह जी दे चरणां विच नतमस्तक होण दा सुभाग प्राप्त होया है। आओ सत संगत जी अमृत वेले जो पावन श्री मुखवाक सचखंड हरिमंदर साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने समुची मानुखता दे लई उपदेश ते असीस रूप बख्शिश किते हन उन्हां पावन श्री मुखवाक दी विचार लई आप जी नेता प्रति इस पावन स्थान ते एकत्र होके गुर शब्द विचार सरवण कर देओ अज दे ना पावन पवित्र बचना नू समझन अते विचारन दा जतन करिए ते बेनती करां गुरबाणी बेअंत है करते परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु दा रूप है। सतगुरु पातशाह जी आखदे ने हो आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो रब दा हुक्म कै विचार जदों चलदी है असी संसारिक तल ते अर्थ जरूर करदे हां अर्थ ते गुरबाणी नू कमाउणा बड़ा वड्डा फर्क है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी बड़ा सोहना बचन क्या करदे सी गहरा समुंदर भी है गहरी गुरबाणी भी है गुहज है। समुंदर विच जान लग्या बंदा डुबदा है समुंदर दी गहराई मनुख दी मौत दा कारण बनदी है जेड़ा गुरबाणी दी गहराई विच जांदा डुबदा भी तर जांदा है गुरबाणी तारदी है। जतन करिए अजोका समा जो कुछ चल रहा है बचन दा इको एक ढंग है मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहूं अपने जीवन नूं गुर आसे मुताबक ढाल लईए सतगुरु कृपा करन आओ अज दे ना पावन पवित्र बचना नूं समझन अते विचारन दा जतन करिए। आरंभता तो पहला आप जी जिन्हें भी शरीर सतगुरु पातशाह जी दे हजूर जुड़े हो घरां विच विदेशां विच बह के सरवण कर रहे हो सतगुरु पातशाह जी नूं नतमस्तक होके हाजरी लवाओ सारे जपना करो जी।

0: सच्चे रत्ता सच। दाता जी कह रहे ने जेड़ा परमात्मा दे नाम दे विच रंगया गया ना उदा रंग कदे नहीं जे उतरता। लालो लाल है सच्चे रत्ता सच। जिस दी सुरत सच विच जुड़ी उदा मन परमात्मा दे रंग विच हमेशा रंगया रहिंदा है।
1: महला तीजा।
0: गुरु अमरदास साहिब पातशाह जी अगे बख्शिश करदे ने जी।
1: सहज वनस्पत फुल फल पवर वसै भै खंड।
0: सहज वनस्पत सतगुरु आखदे ने फुल फल पवर वसै भै खंड। सहज वनस्पत कहिंदे सारी दी सारी वनस्पति फुल ने एदे विच फल ने पवर ने भै खंड। बंदगी करन वाला जेड़ा है ना उह सारी सृष्टि दे विचों एक परमात्मा दे दर्शन करदा है। अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा कहिंदे ओहदे उत्ते इदां दी किरपा करदा है कि जिवें भौरा फुल विच समाया रहिंदा है इस तरह परमात्मा दी याद विच जुड़

0: जिन्हें आप पछाणा, जिन्ह ने अपने आप नू पछाण लिया। अपा पिछे विस्तार कर आए हैं, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, पछाणी अपने आप नू। असी साध संगत थां थां जाके रुलन वाले नहीं हैगे। दाता जी ने ते सानू खालसा अकाल पुरख की फौज क्या है, असी उस मालक दी आंसा। जिस दिन अपना आप पछाण आजूगा ना, फिर समझ आवेगा, नहीं भाई तू ते कलगियां वाले बापू दा पुत्र है, तैनू ते कलगियां वाले बापू ने कहा सी तू एक अगे झुकना है। जिस दिन एक अगे झुकोगे, दाता जी कहंदे फिर ए मन भटकेगा नहीं। हर सेती सतगुरु आखदे ने सदा मिल रहे, जिन आप पछाणा, जिन्हां ने अपने आप नू पछाण लिया, ओ हमेशा परमात्मा नाल जुड़दे हन जी।
1: ज्ञानिया का एहो महत है, मान माहे समाना।
0: ज्ञानी जेड़ा है ना, दाता जी कहंदे ए ओदा महत पाओ, ओदा ए टारगेट हुंदा है मन माहे समाना। ओ दूजियां वल्लों नहीं, ओ अपने आप नू पड़चोलदा है। ज्ञानी यही समझाउंदा है, ज्ञानी दा कम डराना नहीं जी, अज तुसी ऐं करता जी, अज ऐं कोया जी, नहीं। दाता जी कहंदे ने पै काहू को देत नह, नह पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जेड़ा अपने आप नू पड़चोलदा, सतगुरु कहंदे ओ असल विच ज्ञानी है जी।
1: हर जीओ का महल पाया, सच लाए ध्याना।
0: उन्हें सच विच अपना ध्यान जोड़िया है, तेनू परमात्मा दा घर मिल गया है।
1: जिन गुर प्रसादी मन जीतेया, जग तिन्हे जताना।
0: सब तो वड्डी खेड़ जी सतगुरु समझाउंदे ने, जिन गुर प्रसादी मन जीतेया, जग तिन्हे जताना। अज जोर लगी हुई है किसे नू खुश किवें करिए, किसे नू खुश किवें करिए, यही हालात ने जी। बाहरों ओहदे लई कई वारी असीं भेख भी धारण कर लैने आ। साध संगत कोई बंदा पुलिस विच नहीं ना कहे, जो पुलिस की वर्दी पा लवे ना उन्हूं सजा मिलती है, ध्यान देना। कोई आर्मी च नहीं, आर्मी की वर्दी पा लवे उन्हूं की मिलती जी, सजा मिलती है। तो मैं तुहानू भी आखांगा, बाहरों धर्म का बाणा पा के जे असी धर्मी ना ना कोई तैयारी आपां भी रखीए, उहदी सजा सानू भी मिलनी है। सतगुरु ने बेनती करिए, पातशाह जे बाहरों बाणा दिता है ना, कृपा करना अंदरों भी साढ़े कितने सच टिक जाए, अंदरों भी सच टिक जावे। यह की है जी, ये मन नू जितना है, रोज एदे नाल लड़ना है। खालसा सो जो चढ़े तुरंग, खालसा सो जो करे नित जंग। किदे नाल? अपने आप नाल रोज जंग करिए, रोज लड़िए अपने आप नाल। जदों असी अपने आप नाल लड़ांगे, दाता जी कहिंदे दुनिया की कोई ताकत तुहानू नहीं करा सकती। तां ज सतगुरु कहिंदे जिन गुर प्रसादी मन जितया, जग तिन्हें जिताना। जिन्होंने गुरु की कृपा नाल अपने मन नू जित लिया, फिर उन्होंने दुनिया की कोई ताकत नहीं जे जित सकी। ओदियां उदाहरणां ने, अगे जून का महीना आ रहा है, गुरु नू समर्पित होए ओ गुरु के लाल, सारी हिंदुस्तान की फौज लग गई, उन्होंने नहीं जे जित सकी, नहीं जित सकी। अज ते साध संगत चार रिश्तेदार सानू जित लैंदे ने, क्यों? असी वो बचन नहीं भुल गए, सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। सवा लाख नाल लड़ाया सानू, ते साध संगत अज चार रिश्तेदार ने, क्यों? असी अपने मन नू नहीं जित सके, दूजियां वल चले। दाता जी कहिंदे जिस दिन गुरु वल चलेगा, तेरा मन जिहड़ा है वह जितया जाएगा। ते जिहड़ा मन जित गया, मन जीते जगदीच, वह सारी दुनिया ते राज करदा है, उन्हू कोई नहीं हरा सकता। सतगुरु रहमत करन असी सच वल तुर सकीए। गुरु करदा पंथ का प्रचारक होने के नाते आप समूह संगतां दे चरणां विच बेनती है, 31 मई नूं महान पवित्र स्थान धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बख्शिश गुरुद्वारा बाबा बकाला साहब पातशाही नौवीं विखे महान पंथक इकट्ठ रख्या गया, जिहड़ा सत्कार एक्ट तैयार होया है, उहदे विच खामियां ने जिहड़ियां, क्यों साध संगत दोषी नालों वध जिहड़ा है ना उह संभाल करन वाले वालों उंगल चुकी है, उहदे विच आपां भी है, तुसीं भी है। असी ये नहीं कह रहे कि जी तुसी कानून ही रद्द कर दो, सोधा ने मैं थोड़ी देर पहला भी कीती सी बेनती, भुलन अंदर सब को अपुल गुरु करतार। मनुख दे कोलो भुल होनी सुभाविक है, ते जिहड़ा अकाल तख्त साहिब दे सन्मुख झुकेगा, गुरु रामदास साहिब जी दे सन्मुख झुकेगा ना, उन्हूं इत्थों बख्शिश ही मिलनी है, वडियाई मिलनी है। जतन करिए फिर, सारे ने उत्थे कुम पा के पहुंचना, भावें साध संगत ਕੋਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਖਾਸ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਜੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਦਾ, 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਹਿ ਜੀ।

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास है। वो हम सबकी रक्षा हर दम हर समय करते हैं। वही तो हमारे सच्चे हितेशी मित्र हैं। आपके और हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं घटित हो रहा, और ना ही इसके पीछे किसी की साजिश या सिफारिश है। ये तो उस परम पिता परमेश्वर के विधि विधान के अनुसार हमारे और आपके जीवन में घटित होता चला जाता है। और यकीन मानिए, भगवान जो भी हमारे जीवन में करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे हित के लिए होता है। कैसे जानते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असीं बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलीगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन अपने दास के साथ। भगवान पर विश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना निष्ठा के ना तो मन को शांति मिलती है और ना ही जीवन को सही दिशा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, अर्थात जो मनुष्य हर समय संदेह में रहता है वो ना इस लोक में सुख पाता है और ना ही आगे। विश्वास ही शक्ति है जो इंसान को अंधेरे में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। अचानक राजा का पैर फिसला और उसकी उंगली कट गई। राजा दर्द से चिल्लाने लगा और मंत्री उसका शांत होकर बोला, महाराज जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए करते हैं। राजा को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने गुस्से में मंत्री को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर अकेले शिकार पर गया। जंगल में कुछ आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वह अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किसी मनुष्य की बलि देना चाहते थे। राजा को बलि के लिए तैयार किया गया। तभी कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे बलि रोक देनी पड़ी। क्या हुआ बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो राजा की बलि देने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, किंतु तभी आदिवासियों में से एक आदमी ने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति पूर्ण नहीं है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, और राजा को छोड़ दिया गया। राजा किसी तरह महल वापस पहुंचा और मंत्री की बात याद आई कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। वह तुरंत जेल गया और मंत्री से क्षमा मांगी। किंतु राजा के मन में एक सवाल था। उसने पूछा, मेरी उंगली कटने में तो भलाई थी, किंतु मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, उसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, यदि मैं जेल में ना होता तो आज आपके साथ जंगल में होता, और क्योंकि मैं पूरी तरह स्वस्थ था, बलि मेरी चढ़ जाती। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम उस समय दुख समझते हैं, किंतु बाद में वही हमारे लिए वरदान बन जाती है। जब इंसान भगवान पर विश्वास खो देता है, तब हर परिस्थिति में उसे अन्याय लगती है, किंतु जिसकी निष्ठा मजबूत होती है, वह कठिन समय में भी टूटता

नहीं, सच्ची भक्ति इस भरोसे से आती है कि भगवान जो कर रहे हैं उसमें भी कोई छुपी हुई कृपा है। इस पर हमें पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June।
2: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल टी बार्स इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900 ईमेल sales@ozlintels.au।
3: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उन्हां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
4: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
5: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
4: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 Main Road वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 Lonsdale Street डेंडी नॉग। फॉर मोर इनफो कॉल 0 499-2535-45।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
3: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। आज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
0: 0433-465-492। विजिट uvfinancial.com.au।
4: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: फ्री टेफ नाल अपने शौक नू अपनी नौकरी विच बदलो। हॉस्पिटैलिटी तो लेके साइबर सुरक्षा तक बिना किसी ट्यूशन फीस दे 80 तो वध भारी मांग वाली योग्यतावां अते छोटे कोर्सां विचों चुनो। उस नौकरी लई हुनर हासिल करो जो तुसी करनी चाहुंदे हो। फ्री टेफ सुपने नू हकीकत बनाउंदा है। टेफ विक्टोरिया नाल अपने सुपने नू हकीकत बनाओ। फ्री टेफ लिख के खोजो।
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ Mustang, brand new demo ਤੇ quality pre-owned vehicles, trade-in ਅਤੇ finance options ਵੀ available। ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Ford ਦਾ test drive ਕਰੋ। Business fleet ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। Vehicle experts, Tim Forbes ਜਾਂ Corey ਨਾਲ। Radio ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का वे हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।